सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूं मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: पापा कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन, दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीणा के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: हर बीट में है शहर का कमाल
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो रेस गंगापुर सिटी का तड़का पर। चलिए दोस्तों, अभी सुना आपने फिल्म संगीत कार्यक्रम, थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों फिलहाल 10 बज चुके हैं और गंगापुर सिटी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम का।

0: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।

0: हेलो
1: जी, नाम बताइए सर। कुछ सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना। हेलो
0: हेलो
1: जी, नाम बताए।
0: सवाई माधोपुर से बोल रहा है सर, मोनिका।
1: मोनिका जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
0: सर। बिन फेरे हम तेरे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश से, बेहतरीन सा गाना। रेडियो डी एस पर कॉल किया, धन्यवाद।

सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सर मेरी आवाज
1: हेलो
0: हेलो
1: जी नाम बताएं सर कहाँ से बात कर रहे हैं सर
0: बदमाशों से
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप
0: जस्टिन बीबर

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: राधिका चावला।
0: राधिका जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगा कुर्सी थी।
0: बताएं राधिका जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: एक तरफा है मेरा प्यार।
0: एक तरफा है मेरा प्यार।
1: हाँ
0: बिल्कुल, सुना रहे राधिका जी आपको आपकी चॉइस।
1: कौन सी?
2: सोम्या, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हेल्प करो। मैं डॉल को अपनी दिल की बात बताना चाहता हूं। There I really love her, और इसमें बस तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं।
1: नाम जय किशन है।
0: जय किशन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं गंगापुर सूटी जी आर गारमेंट्स।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है राजा भैया, वो संडे मनाओ सॉन्ग, संडे मनाओ।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपका भी फरमाइश करेगा।

0: थैंक यू सर।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: गुलशन।
1: गुलशन कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी।
1: बताएं गुलशन, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: तेरी तना तेरा गाँव भी खूबसूरत है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं गुलशन आपका, आपकी फरमाइश के बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: पीयूष।
1: पीयूष, अभी कॉल तो कर दिया ना आपने। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: सचिन।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: सिंगापुर।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: डाउट।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपका। आपके

0: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है।

0: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं।
0: आरती वर्मा लाल चौक।
1: आरती वर्मा लाल चौक से। आरती जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: इतना प्यारा है श्रृंगार तेरी लेली मधुरता।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन। हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: पता है सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपका, आपकी फ्रॉइस के बिल्कुल सुना रहे हैं आप जी, आपकी फ्रॉइस का बेहतरीन सा बजा।
2: थैंक यू सर।
1: हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: सोमेश कुमार जी आर गार।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: चांदनी रात में वो भी चला गया।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फ्रॉइस का बेहतरीन सा गाना।
3: हेलो
4: हेलो

0: नाम बताएं सर आपका।
1: मेरा नाम जितेश है।
0: जितेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं जितेश जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हरियाणा को पंजाब का।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी वॉइस का बेहतरीन सर।

0: एफडीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी।
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: हेलो
5: जी, नाम बताएं सर।
4: आयुष मीना।
5: आयुष मीना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: वेदांत हॉस्टल, नसिया कॉलोनी।
5: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: यारी।
5: सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का यारी सॉन्ग।

0: कल कोर्ट में गवाही देना बहुत जरूरी है। बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए मेरे भाई।
1: दो चार बेगुनाह मर गए तो क्या हुआ? तुम्हारे इस भैया जी की वजह से तुम्हारे घर के चूल्हे जल रहे हैं।
2: किसी भी तरीके से वो कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, उसे रोकना है।
3: तू चिंता मत कर, कल मैं पहुंचाऊंगा तुझे कोर्ट।
4: नहीं पहुंचेगा भैया जी।

0: धन्यवाद।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
1: गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका।
1: दुकान हो रही
2: सर, नाम बताएं आपका।
1: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
2: चौधरी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: करौली जिले से बोल रहा हूँ।
2: बताएं चौधरी जी, कौन सा गाना सुनना है?
1: सात सहेलियां खड़ी हुई।
2: बिल्कुल सुना रहे सर आपकी समय पे बेहतरीन सा गाना।
3: 89.6
2: हेलो,
3: जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
4: वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं।
1: निशा जी, मैं गंगापति से।
0: निशा जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: तुझे मैंने बुलाया एक बार, तेन बिल्कुल
0: सुना रहे। निशा जी आपको आपकी फरमाइश।

0: कुछ सुनाएगा नहीं?
1: तो के है ही नहीं।
0: अच्छा जी, मैं कहा फिर सुनाएगा?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
3: टीना।
2: टीना कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: करौली फाटक।
2: करौली फाटक से। बताएं टीना, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: मुझको रहना जी, माफ करना गलती।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: सर मेरा नाम गोविंद है, गंगापुर सिटी संजय कॉलोनी से।
0: गोविंद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर मेरा गाना क्या हकीकत का,
0: कौन सा गाना है सर?
1: दिल ने दिल से प्यार किया हकीकत का।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का।
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन।

0: Academy, Madhyamik Shiksha Board, Rajasthan, Kaksha 10th Pariksha. Parinam 2026. Hamare star performers 99% se adhik, 1 vidyarthi 98% se adhik, 7 vidyarthi 97% se adhik, 28 vidyarthi 96% se adhik, 53 vidyarthi 95% se adhik, 76 vidyarthi 90% se adhik, 252 vidyarthi. Ab aapki bari hai. 10th board 2027 mein 95% plus score ka sapna ab hakikat banega. DS Science Academy mein dakhila le aur bane topper batch 2027 ka hissa. हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक Foundation and Board, RBSE and CBSE, Experienced Faculty, Smart Classrooms and Latest Study Material, Synonym of Success, Admission Open for Session 2026-27, Limited Seats.
1: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं आपका। हाँ सर,
3: गौरव मीना।
2: गौरव जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मैं नसिया कॉलोनी।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: सुमित पार्थ का रैप सॉन्ग चला दो।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करेगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का में आप।

0: साथ है।
1: हेलो,
2: जय श्री राम सर।
1: जय श्री राम जी, नाम बताएं आपका।
2: मेरा नाम गुल्लू वर्मा, श्री राम ड्राई क्लीनर से बोल रहा हूँ, गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: मेरा भजन चलाना सर, वो साला से तने कौन सजाया हो रही।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश के भजन रेडियो डीएस।

पर ये जो भजन है बिल्कुल भगवान से तार मिलाने के भजन है। मन को मिलाते हुए बालाजी महाराज के उस सुंदर रूप का स्वरूप भक्त ने निहारा और कहा, हे बालाजी सरकार,

0: सर, राधे राधे।
1: राधे राधे सर, नाम बताएं आपका।
0: नाम सर मेरा राम सिंह है।
1: राम सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: ये गंगापुर सिटी और जी आर गारमेंट्स।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: ये कर्मा फिल्म का गाना ना जाइयो परदेश।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से ये गाना।

0: हेलो,
1: नाम बताए सर आपका।
0: राधे राधे सर।
1: राधे राधे जी, नाम बताए।
0: नाम आसाराम जागा सर, गंगापुर सिटी से बोल रहा हूँ, अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
1: आसाराम जी बताए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: तेरे दर्शन में जो वो जादू है।

0: गाड़ी है आपको?
1: हेलो हेलो
2: सर मैम
1: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका?
2: खुशी।
1: खुशी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: गंगापुर सिटी।
1: बताएं खुशी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: बुढ़ना सर का पिंजरा सॉन्ग।
1: पिंजरा सॉन्ग?
2: यस
1: बिल्कुल सुना रहे हैं खुशी जी, आपकी फरमाइश पर बेहतरीन।

0: ओए लवर,
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
0: आज कुछ सुनाए गाने?
2: तो के है नहीं।
0: अच्छा जी, मैं कहा

0: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026 हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा हम क्या देते हैं AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स
1: नमस्ते दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी रेगुलर पेरेंट्स अपडेट मोटिवेशनल गाइडेंस वीकली टेस्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस डाउट सॉल्विंग सेशंस बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680 डीएस साइंस एकेडमी कॉन्सेप्ट क्लियर फ्यूचर ब्राइट
2: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर

दोस्तों 1:05 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर 99.6 रेडियो ओडियस गंगापुर सिटी का तड़का। दोस्तों फिलहाल कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: बचपन

0: दोस्तों अभी आपने सुना नए तराने कार्यक्रम। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडियस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों दोपहर के 2 बजने वाले हैं और गंगापुर सिटी का वर्तमान तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के साथ अब थोड़ी देर में आनंद लेंगे भूली बिसरी यादें कार्यक्रम का।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

चलो चलो चलो चलो चलो आंखें बंद करो, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और अगर गाड़ी चला रहे तो आगे खोलो बंद मत करो। पर एक रिसर्च के मुताबिक 100 लोगों पे ये रिसर्च हुआ और उनसे कहा गया कि आंखें बंद, उसके बाद आंखें बंद करके पट्टी यानी ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद उनसे सीधे चलने को कहा गया तो कोई भी सीधा नहीं चल पाए। थोड़ी देर सीधे चले और उसके बाद वो सर्कल्स यानी गोल गोल घूमने लगे, और उसके बाद पता चला कि जब तक हमारे पास कोई विजुअल पॉइंट ना हो, कहीं फोकस ना हो, हम सीधा नहीं चल सकते। अगली बार अगर दोस्त से आपको शर्त लगाना हो तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देना और बोलना कि चल सीधे चल के दिखा। सारे पैसे आपकी जेब में। फिलहाल अमेजिंग गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: गंगापुर सिटी की धरतर
1: देखो आपको कोई और बीमारी है या नहीं मुझे पता नहीं, पर आपको एलोडॉक्सोफोबिया है। हाँ हाँ, आपको ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस। और एलोडॉक्सोफोबिया है क्या? ये है फियर ऑफ ओपिनियंस। किसी के ओपिनियन से अगर आपको डर लगता है तो आपको एलोडॉक्सोफोबिया है। और इस चीज को मैं कैसे प्रूफ करूँ? अब मेरा ओपिनियन है कि भैया आने वाले बैक टू बैक जितने भी गाने आप सुनोगे वो अमेजिंग होने वाले। ये तो मैंने उल्टा ही फैक्ट प्रूव कर दिया, क्योंकि भैया इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपको एलोडॉक्सोफोबिया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा ओपिनियन नहीं है कि आने वाले गाने बैक टू बैक अमेजिंग होंगे। ये ओपिनियन नहीं है तो फिर क्या है? ये फैक्ट है। सुनते रहो 89.6 रेडियो।

0: गंगापुर सिटी की धड़कन
1: देखो, गंगापुर सिटी की एक खास बात है, क्या है मैं नहीं बताऊंगा। ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस, और आज का शो भैया यही तक था। अमेजिंग गाने सुने आपने बैक टू बैक, और आने वाले गाने भी अमेजिंग होने वाले। पर जाने से पहले एक शायरी पेश करूं अगर, कि दिन को होता है दिन और रात को आती है रात। वाह वाह वाह, बहुत ही डीप बात। दिन को होता है दिन और रात को आती है रात। शो यही तक था भैया, फिलहाल खत्म करते हैं बात और गाने सुनो अमेजिंग बैक टू बैक ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। एक ऐसी आवाज जिसने हर दिल को छुआ, वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी बल्कि जादू थी। उनके गाने आज भी सदाबहार हैं। हिंदी सिनेमा को जिसने अपनी अद्भुत आवाज में कई गाने दिए, वो कोई और नहीं बल्कि मुकेश जी हैं। आज सफरनामे में हम बात करने जा रहे हैं मुकेश जी की। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1930 में हुआ था। उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। उनके पिता जोरावर चंद्र माथुर पेशे से इंजीनियर थे। मुकेश के 10 भाई बहन थे और वो छठे नंबर पर थे। मुकेश को बचपन से ही गाने में रुचि थी। वो अपने क्लासमेट्स को गाना सुनाया करते थे। मुकेश जी ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और पीडब्ल्यूडी में नौकरी करने लगे थे। मुकेश जी हमेशा से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे। और बातें मुकेश जी के बारे में कुछ ही देर में 89.6 डीएसएफएम पे मेरे यानी तनीषा के साथ।

89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। एक वेबसाइट को मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि उनके पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रोज सुबह उठकर वो सैर पर जाते थे, लौट कर तैयार होकर रियाज करने बैठ जाया करते थे। उसके बाद घर में बने छोटे से मंदिर के सामने बैठकर वो रामायण पढ़ते थे। रामायण पढ़ते पढ़ते मुकेश इमोशनल हो जाया करते थे। तब माँ कहती थी कि इनके सामने से रामायण हटा लो वरना ये रोते ही रहेंगे। ऐसे थे मुकेश जी। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ मुकेश जी की बातें हम कर रहे थे। मुकेश जी मुश्किल से मुश्किल गीतों को इतनी सहजता और मधुरता से गा लेते थे कि उनके गीत सीधे दिलों में घर कर जाया करते थे। मुकेश की खास बात ये भी थी कि उन्होंने संगीत की बहुत ज्यादा विधिवत शिक्षा भी नहीं ली थी। कुछ दिग्गज गायकों को सुन सुनकर और गीत गा गा कर ही मुकेश ने खुद को संवारा और निखारा। सफरनामे में आज इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नेक कलाकार के साथ। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। और दोस्तों, वक्त हो गया आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइश से बनती है हमारी आवाज। दोस्तों कहते हैं, हर गानों में एक भाव जज्बात होते हैं जो आपकी मन की गहराइयों को छू जाती है एक हसीन जज्बात के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका ये खूबसूरत सफर आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों के साथ दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। और दोस्तों, वक्त हो गया आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइश से बनती है हमारी आवाज। दोस्तों कहते हैं, हर गानों में एक भाव जज्बात होते हैं जो आपकी मन की गहराइयों को छू जाती है एक हसीन जज्बात के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका ये खूबसूरत सफर आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों के साथ दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआईएस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। और दोस्तों, वक्त हो गया आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइश से बनती है हमारी आवाज। दोस्तों कहते हैं, हर गानों में एक भाव जज्बात होते हैं जो आपकी मन की गहराइयों को छू जाती है एक हसीन जज्बात के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका ये खूबसूरत सफर आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों के साथ दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। और दोस्तों, वक्त हो गया आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइश से बनती है हमारी आवाज। दोस्तों कहते हैं, हर गानों में एक भाव जज्बात होते हैं जो आपकी मन की गहराइयों को छू जाती है।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। हेरा रे रा,
1: हेरा रे रा। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। हेरा रे रा,
2: हेरा रे रा। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआईएस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। और दोस्तों, वक्त हो गया आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइश से बनती है हमारी आवाज। दोस्तों कहते हैं, हर गानों में एक भाव जज्बात होते हैं जो आपकी मन की गहराइयों को छू जाती है एक हसीन जज्बात के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका ये खूबसूरत सफर आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों के साथ दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

अच्छा एक बात बताओ कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब आंदोलन? अरे नहीं, ये वाला नहीं, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और मूवमेंट से मेरा मतलब था आंदोलन नहीं, हरकत। हरकतें हम जब बॉडी मूवमेंट करता है, बॉडी हरकतें करती है, वो हरकत क्यों बता रहा, क्योंकि एक फैक्ट के मुताबिक हर सेकंड मैं और आप, हम जैसे नॉर्मल इंसान, हर सेकंड में हमारी जो आंखें होती है वो 50 मूवमेंट्स करती है, यानी हर सेकंड हमारी आंखें 50 अलग अलग प्रकार के हरकतें करती है। लेकिन जब यही रिसर्च भैया गंगापुर सिटी के कुछ लड़कों पे हमने किया तो पाया क्या कि उनकी आंखें 500 तक भैया मूवमेंट करती है हर सेकंड में जब वो अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज के सामने होते। मुझे नहीं पता क्यों, पर फिलहाल आप बैक टू बैक अमेजिंग गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: अच्छा अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे ना ट्यूलिप का फूल दे दो। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और हिंदुस्तान में। तो भैया, अगर आप पैसे के बदले ट्यूलिप का फूल दोगे तो आपको फिर डिशुक डिशुक डिशुक डिशुक। लेकिन अगर आप हॉलैंड में पैदा हुए होते लेकिन साल 2024 नहीं, साल 1634 में अगर हॉलैंड में पैदा होते तो शायद ये काम करते, क्योंकि उस साल हॉलैंड में वहाँ के लोगों ने ट्यूलिप के फूल को नेशनल करेंसी बना लिया। अब इस इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर अमेजिंग बैक टू बैक गाने सिर्फ आपके लिए रेडियो डीएस 89.6 पे।

अगर आप इंसान हो और ज्यादा म्यूजिक सुनते हो तो मुझे नहीं पता उससे कोई फायदा हो भी रहा या नहीं, लेकिन अगर आप गाय हो यानी कि मो काओ तो फिर तो फायदा है। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, आज का शो यही तक था। लेकिन जाने से पहले, काओ यानी कि गाय अगर ज्यादा म्यूजिक वो सुनते हैं तो फिर वो ज्यादा दूध देती है। अब इस इंफॉर्मेशन को अपने ग्वाले तक पहुंचाओ, क्योंकि वो हर रोज आपको दूध में पानी मिला के दे रहे। बोलो भैया प्लीज पानी मिलाना बंद करो और अपने गाय को म्यूजिक सुनाओ। फिलहाल आप म्यूजिक सुनो 89.6 रेडियो डीएस पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ सफरनामे में आपका स्वागत है। हिंदी संगीत और सिनेमा को सजाने में बहुत से गायक और संगीतकारों का अहम योगदान रहा है। कुछ सितारों ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि जमाने बदल गए, लेकिन उनका जादू आज भी कम नहीं हुआ। ऐसे ही एक संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। सचिन देव बर्मन को लोग आज भी एसडी बर्मन के नाम से जानते हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने अपनी आवाज और संगीत से खूब नाम कमाया। एसडी बर्मन एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन असल जिंदगी में बेहद सरल जीवन जीते थे। एसडी बर्मन साहब की मां का नाम निर्मला देवी था, जो मणिपुर की राजकुमारी थी, जबकि उनके पिता एक महाराजा के बेटे थे। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीष आपके साथ। एसडी बर्मन साहब ने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की। संगीत की दुनिया में उन्होंने सितार वादन के साथ कदम रखा। कोलकाता विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद एसडी बर्मन ने 1932 में कोलकाता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों में तथा फिर हिंदी फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला किया। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: SD बर्मन के किस्से पूरी इंडस्ट्री में मशहूर थे। शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले SD बर्मन को लोग कंजूस भी कहा करते थे। उनसे जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा है चप्पल का। दरअसल जब भी SD बर्मन मंदिर जाया करते थे तो उन्हें अपनी चप्पल खोने का डर लगा रहता था, और इससे बचने के लिए वो एक तरकीब निकाला करते थे। SD बर्मन जब भी मंदिर जाते थे तो वो कभी भी दोनों चप्पल एक साथ नहीं उतारते थे। इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजकल शहर में चप्पल चोरी की वारदात बढ़ गई है। तब उनके दोस्त ने पूछा कि अगर चोर ने दोनों चप्पल खोज ली तो क्या होगा। ऐसे में उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा, यदि इतनी चप्पलों में से दोनों चप्पल खोज निकालता है तो सच में वो इसका हकदार है। SD बर्मन की और बातें आपके लिए 89.6 DSFM पे, मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। एसडी बर्मन ने फिल्म तलाश, बंदनी, अमर प्रेम आदि फिल्मों में भी गानों को अपनी आवाज दी। उनकी प्रमुख फिल्में मिली, अभियान, ज्वेल थीफ, गाइड, प्यासा, बंदनी, सुजाता और टैक्सी ड्राइवर थी। 1969 की फिल्म आराधना में भी एसडी बर्मन का ही संगीत था। इस फिल्म से एक और सुपरस्टार राजेश खन्ना का उदय हुआ। वहीं गायक किशोर कुमार के करियर को भी नई ऊंचाई मिली। सफरनामे में आज इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

चलो चलो चलो चलो चलो, आंखें बंद करो, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और अगर गाड़ी चला रहे तो आगे खोलो, बंद मत करो। पर एक रिसर्च के मुताबिक 100 लोगों पे ये रिसर्च हुआ और उनसे कहा गया कि आंखें बंद, उसके बाद आंखें बंद करके पट्टी यानी ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद उनसे सीधे चलने को कहा गया, तो कोई भी सीधा नहीं चल पाए, थोड़ी देर सीधे चले और उसके बाद वो सर्कल्स यानी गोल गोल घूमने लगे। और उसके बाद पता चला कि जब तक हमारे पास कोई विजुअल पॉइंट ना हो, कहीं फोकस ना हो, हम सीधा नहीं चल सकते। अगली बार अगर दोस्त से आपको शर्त लगाना हो तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देना और बोलना कि चल सीधे चल के दिखा। सारे पैसे आपकी जेब में। फिलहाल अमेजिंग गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: गंगापुर स्थिति की धरकर
1: देखो, आपको कोई और बीमारी है या नहीं मुझे पता नहीं, पर आपको एलोडॉक्सोफोबिया है। हाँ आपको, ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस। और एलोडॉक्सोफोबिया है क्या? ये है फियर ऑफ ओपिनियंस। किसी के ओपिनियन से अगर आपको डर लगता है तो आपको एलोडॉक्सोफोबिया है। और इस चीज को मैं कैसे प्रूव करूँ? अब मेरा ओपिनियन है कि भैया आने वाले बैक टू बैक जितने भी गाने आप सुनोगे वो अमेजिंग होने वाले। ये तो मैंने उल्टा ही फैक्ट प्रूव कर दिया, क्योंकि भैया इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपको एलोडॉक्सोफोबिया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा ओपिनियन नहीं है कि आने वाले गाने बैक टू बैक अमेजिंग होंगे। ये ओपिनियन नहीं है तो फिर क्या है? ये फैक्ट है। सुनते रहो 89.6 रेडियो डीएस।

0: पास सिटी के घर पर रेडियो डीएस, रेडियो डीएस, रेडियो डीएस।
1: देखो गंगापुर सिटी की एक खास बात है, क्या है मैं नहीं बताऊंगा। ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस और आज का शो भैया यही तक था। अमेजिंग गाने सुने आपने बैक टू बैक और आने वाले गाने भी अमेजिंग होने वाले। पर जाने से पहले एक शायरी पेश करूं अगर, कि दिन को होता है दिन, दिन को होता है दिन और रात को आती है रात। वाह वाह वाह, बहुत ही डीप बात। दिन को होता है दिन और रात को आती है रात। शो यही तक था भैया, फिलहाल खत्म करते हैं बात और गाने सुनो अमेजिंग बैक टू बैक ओनली 89.6 रेडियो डीएस।